0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। साथ ही साथ बहुत बहुत स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में।
2: तो आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखा है, मेहनत हिम्मत और लगन से कल्पना और योजना साकार होती है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले हमारे श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।

0: तो पहला संदेश हमें मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव जी का।
1: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
0: और तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
1: गांव ढाणी कुतुब जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी किरत अवाना लिखते हैं।
0: कार्यक्रम उमंग की प्रस्तुतकर्ता आदरणीय विमलेश जी और अजीत जी को सादर नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: 8 सितंबर 2026 को अरुणिमा सिन्हा के संघर्ष से सफलता की कहानी सुनकर वास्तव में बहुत प्रेरणा मिली
1: जी।
0: उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति यह सिखाती है कि निरंतर प्रयास और मजबूत संकल्प के सामने कोई भी शारीरिक बाधा सफलता की राह नहीं रोक सकती। साथ ही लुका छिपी कार्यक्रम ने बचपन की खूबसूरत यादें ताजा कर दी। आपका कार्यक्रम मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद भी है। आपकी कड़ी मेहनत और शानदार प्रस्तुति को दिल से सलाम
1: जी। आपने आगे लिखा है दिनांक 10 सितंबर 2026 को कार्यक्रम उमंग के अंतर्गत भारत की पहली महिला फोटो पत्रकार होमी व्यारावाला के जीवन एवं उपलब्धियों की जानकारी अत्यंत रोचक एवं ज्ञानवर्धक रही। वहीं माउंटेन मैन दशरथ मांझी के संघर्ष और दृढ़ संकल्प की प्रेरणादायक कहानी ने हमें सिखाया कि कठिन परिश्रम और अटूट संकल्प से बड़ा लक्ष्य भी हासिल किया जा सकता है। आपका ये कार्यक्रम भारत की विविधता में एकता और प्रेरणादायक व्यक्तित्वों से परिचित कराता है, जिसका मुझे अपने परिवार के साथ बेसब्री से इंतजार रहता है। इस बेहतरीन प्रस्तुति के लिए दिल से धन्यवाद एवं हार्दिक आभार।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक आभार, क्योंकि आप परिवार के साथ हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं
1: जी।
0: अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का।
1: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
0: आप सबके संदेशों के लिए हमारा आभार। श्रोताओं, इसी तरह से जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से। पुरस्कारों और सम्मानों की चर्चा के इस पड़ाव पर आज हम बात करेंगे भारत के साहित्य जगत के अत्यंत प्रतिष्ठित सम्मान की, ज्ञानपीठ पुरस्कार की।
1: जी हाँ श्रोताओं, ज्ञानपीठ पुरस्कार का नाम तो हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई और इसे देने का उद्देश्य क्या है, इसकी जानकारी अक्सर लोगों को कम होती है। तो आइए अब जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। अजीत जी, अब आपकी बारी।
0: जी विमलेश जी, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार का नाम तो हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई और इसे देने का उद्देश्य क्या है, इसकी जानकारी अक्सर लोगों को नहीं होती। तो आइए अब जानते हैं इसके बारे में विस्तार से।
1: ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का एक प्रमुख साहित्यिक सम्मान है। इसकी स्थापना 1961 में भारतीय ज्ञानपीठ संस्था द्वारा की गई थी और पहला पुरस्कार 1965 में प्रदान किया गया।
0: तो हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस साहित्यकार को मिला था।
1: जी बताती हूँ, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम के महान कवि जी शंकर कुरुप को वर्ष 2065 में प्रदान किया गया था। उन्हें उनके काव्य संग्रह उड़क्कुझल यानी बांसुरी के लिए सम्मानित किया गया था।
0: बहुत सुंदर, यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत ही भारतीय भाषाओं के साहित्य को सम्मान देने से हुई।
1: जी बिल्कुल। श्रोताओं, जैसा कि हम जानते हैं, हमारा भारत अनेक भाषाओं और साहित्यिक परंपराओं वाला देश है। ज्ञानपीठ पुरस्कार का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्यिक सृजन को पहचान और सम्मान देना है। तो अजीत जी, किन किन भाषाओं के साहित्यकारों को ये पुरस्कार मिल सकता है?
0: विमलेश जी, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं के साहित्य से संबंधित है
1: जी।
0: समय के साथ साथ इसका दायरा बढ़ा है। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, बांग्ला, मराठी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, ओडिया, असमिया, पंजाबी, कश्मीरी, मैथिली और अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्यकार अब तक इस सम्मान से अलंकृत हो चुके हैं
1: जी। यानी ये पुरस्कार केवल किसी एक भाषा के साहित्य को नहीं, बल्कि भारत की विविध साहित्यिक सृजन एवं परंपराओं को सम्मान देता है।
0: जी हाँ, बिल्कुल सही, यही इसकी सबसे सुंदर विशेषताओं में से एक है।
1: अजीत जी, अक्सर एक प्रश्न मेरे मन में आता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार का नाम ज्ञानपीठ क्यों रखा गया?
0: बहुत सुंदर प्रश्न है विमलेश जी। देखिए, ज्ञानपीठ का अर्थ है ज्ञान का स्थान या ज्ञान का आसन। नाम से ही स्पष्ट है कि यह पुरस्कार साहित्य और ज्ञान की साधना को सम्मान देने की भावना से जुड़ा हुआ है।
1: तो इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले कुछ प्रसिद्ध साहित्यकारों के नाम भी तो बताइए, हमारे विद्यार्थी श्रोता जरूर इस जानकारी से लाभान्वित होंगे।
0: जी जरूर। हिंदी साहित्य में सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, महादेवी वर्मा, नरेश मेहता, निर्मल वर्मा, कुंवर नारायण, कृष्ण सोबती और विनोद कुमार शुक्ल जैसे साहित्यकार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं
1: जी। तो चलिए अजीत जी, अब लगे हाथों आपसे भी एक प्रश्न। और वो प्रश्न ये है कि भारतीय साहित्य में ज्ञानपीठ पाने वाली पहली महिला कौन थी?
0: ये तो बड़ा अच्छा प्रश्न है विमलेश जी। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता पहली महिला आशापूर्णा देवी थी,

0: जिन्हें 1976 में बांग्ला साहित्य के लिए यह सम्मान मिला था।
1: जी
0: तो अब एक प्रश्न मेरी ओर से, क्या यह पुरस्कार केवल कविता के लिए दिया जाता है?
1: नहीं अजीत जी, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य की विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, जिसमें कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध और अन्य साहित्यिक रचनाएं भी शामिल होती हैं।
0: श्रोताओं, आपकी जिज्ञासा तो जरूर बढ़ रही होगी कि इस पुरस्कार में मिलता क्या है। तो आपको हम बता दें, इस पुरस्कार के साथ साथ प्रशस्ति पत्र, वाग्देवी की प्रतिमा और नकद राशि भी दी जाती है।
1: आपने कहा वाग्देवी की प्रतिमा, यानी माँ सरस्वती की प्रतिमा।
0: जी हाँ, भारतीय परंपरा में माँ सरस्वती को ज्ञान, विद्या और वाणी की देवी माना जाता है।
1: जी
0: इसीलिए साहित्य के सर्वोच्च सम्मानों में वाग्देवी की प्रतिमा का होना तो बहुत ही अर्थपूर्ण है।
1: तो श्रोताओं, आज हमने जाना कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कब शुरू हुआ, पहला पुरस्कार किसे मिला और इसका साहित्य में क्या महत्व है।
0: और सबसे महत्वपूर्ण बात श्रोताओं, भारत की विविध भाषाएं हमारी सांस्कृतिक शक्ति हैं। हिंदी हो या बांग्ला, तमिल हो या मलयालम, मराठी हो या कन्नड़, हर भाषा अपने साथ एक समृद्ध साहित्यिक प्रवाह लेकर चलती है।
1: और ज्ञानपीठ पुरस्कार उस साहित्यिक विविधता को सम्मान देने वाली एक महत्वपूर्ण परंपरा है।
0: जी हाँ बिल्कुल। तो आइए श्रोताओं, हम भी अपनी मातृभाषा और स्थानीय भारतीय भाषाओं के साहित्य को पढ़ें, समझें और आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाएं।
1: क्योंकि भाषा केवल बोलने का माध्यम नहीं, बल्कि हमारी स्मृतियों, विचारों और संस्कृति की पहचान भी है। तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी आज की जानकारी, जरूर लिख भेजिएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो हमारा आज का प्रश्न है श्रोताओं, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला और उनकी भाषा का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला और उनकी भाषा का नाम बताइए।
0: तो 8800440559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर हमारे प्रश्नों के उत्तर या प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्पों पर जाकर आप इन पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
0: और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आप उन कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं जो आप उमंग कार्यक्रम में सुनते हैं। तो अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। श्रोताओं, हमारा आज का पहला कार्यक्रम है सीखो।
1: ये कार्यक्रम हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि श्रीनाथ सिंह जी द्वारा रचित कविता सीखो का संगीत रूपक है, जिसके द्वारा संदेश दिया गया है कि हमें प्रकृति का ध्यान से अवलोकन करना चाहिए और उससे शिक्षा लेनी चाहिए।
0: सीखो। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। फूलों से नित हंसना सीखो,
2: फूलों से नित हंसना सीखो,
0: भौरों से नित गाना,
2: भौरों से नित गाना,
0: तरु की झुकी डालियों से नित,
2: तरु की झुकी डालियों से नित,
0: सीखो शीश झुकाना,
2: सीखो शीश झुकाना,
0: सीख हवा के झोंकों से लो,
2: सीख हवा के झोंकों से लो,
0: कोमल भाव बहाना,
2: कोमल भाव बहाना,
0: दूध तथा पानी से सीखो,
2: दूध तथा पानी से सीखो,
0: मिलना और मिलाना,
2: मिलना और मिलाना,
0: सूरज की किरणों से सीखो,
2: सूरज की किरणों से सीखो,
0: सूरज की किरणों से सीखो,
2: सूरज की किरणों से सीखो,
0: जगना और जगाना,
2: जगना और जगाना,
0: लता और पेड़ों से सीखो,
2: लता और पेड़ों से सीखो,
0: सबको गले लगाना,
2: सबको गले लगाना,
0: दीपक से सीखो जितना,
2: दीपक से सीखो जितना,
0: हो सके अंधेरा हरना,
2: हो सके अंधेरा हरना,
0: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
2: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
0: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
2: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
0: सच्ची सेवा करना,
2: सच्ची सेवा करना।

0: जलधारा से सीखो आगे,
1: जलधारा से सीखो आगे,
0: जलधारा से सीखो आगे,
1: जलधारा से सीखो आगे,
0: जीवन पथ में बढ़ना,
1: जीवन पथ में बढ़ना,
0: और धुएं से सीखो हरदम,
1: और धुएं से सीखो हरदम,
0: ऊंचे ही पर चढ़ना,
1: ऊंचे ही पर चढ़ना।
0: अभी आपने सुना इस कविता का आदर्श वाचन। आइए अब सुनते हैं इस कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो सुना बच्चों ये गीत कैसा लगा? अच्छा लगा ना? हमने सुना कि फूलों से, पक्षियों से, नदी से, दूध और पानी से और धुएं से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना? सच तो ये है कि पूरी प्रकृति से हम कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं, बस जरूरत है ध्यान से देखने और सोचने की, है ना? इतना ही नहीं, हम अपने मित्रों से और बड़ों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि पता है हम जिससे भी मिलते हैं ना, उसे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मालूम है जो शायद हमें मालूम नहीं है। तो बच्चों, अब आपके लिए एक काम, पूरी कविता एक बार फिर से पढ़िए और पता लगाइए कि जिनका वर्णन कविता में है उन्हें छोड़कर और कौन कौन सी चीजें प्रकृति में हैं जिनसे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो जरा सोचिए और पता कीजिए और अपने बड़ों और मित्रों से साझा कीजिए। अभी आपने सुना कार्यक्रम सीखो और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
1: ये कार्यक्रम भारतीय सेना के महानायक और वीर योद्धा सूबेदार जोगिंदर सिंह जी के जीवन और भारत चीन युद्ध के समय उनके द्वारा प्रदर्शित

0: जब तुम लौट कर जाओ तो लोगों से हमारे बारे में कहना कि तुम्हारे कल के लिए हमने अपना आज कुर्बान कर दिया, हमने अपना आज कुर्बान कर दिया। जरूर ये शब्द किसी ऐसे युद्धवीर के होठों से निकले हैं जिसने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। आज हम भारत माता के एक ऐसे ही सपूत की चर्चा करेंगे जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया और देश का मस्तक गौरव से ऊंचा कर दिया।
1: वो युद्ध नायक हैं भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह। उनका जन्म 28 सितंबर 1921 को पंजाब के मोगा जिले के एक छोटे से गांव महाकला में हुआ था। बचपन से ही वो बड़ी कुशाग्र बुद्धि के थे और अपने स्कूल में एक मेधावी विद्यार्थी माने जाते थे। जोगिंदर सिंह सेना में भर्ती हो गए।
0: कार्य के प्रति निष्ठा और कर्तव्यों के प्रति सजगता के कारण यूनिट के सभी लोग उनका सम्मान करते थे। अधिकारी गण भी उनसे प्रसन्न थे। धीरे धीरे उन्नति करते हुए वो यूनिट इंस्ट्रक्टर बन गए।
1: सन 1962 जोगिंदर सिंह की यूनिट में खेल अभ्यास चल रहा था। उनकी टीम लखनऊ में संपन्न होने वाली बास्केटबॉल टूर्नामेंट की तैयारी कर रही थी।
2: ये क्या? इसका मतलब क्या वॉर शुरू हो गई? हाँ।
1: ये था 1962 का वर्ष। भारत चीन सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। चीनी फौज बख्तरबंद गाड़ियों, तोपों और आधुनिक हथियारों के साथ भारत की सीमा की ओर बढ़ चली थी। लेकिन अब तक हमला नहीं हुआ था।
0: भारतीय सीमा की ओर चीनी फौज की बढ़त ने साफ संकेत दे दिया था कि युद्ध होकर रहेगा। जोगिंदर सिंह 16 रेजिमेंट में थे। उनकी बटालियन को तुरंत लखनऊ से वापस आने का संदेश दिया गया और फौरन उन्हें नेफा में मोर्चा संभालने का आदेश दिया गया।
1: नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, आज ये क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश कहलाता है। सूबेदार जोगिंदर सिंह की पलटन को बूमला तवांग में तैनात किया गया। बूमला तवांग एक अत्यंत दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है जहां लगभग हर समय बर्फ जमी रहती है। भारतीय सेना को ऐसे पर्वतीय और बर्फानी क्षेत्र में युद्ध करने का अनुभव ना के बराबर था। उनके पास वहां की भयंकर ठंड को झेलने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी नहीं थे।
0: इतना ही नहीं, भारतीय सेना के पास हथियारों और गोला बारूद की भी कमी थी। जोगिंदर सिंह पलटन के इंचार्ज थे।

0: उन्होंने 1947-48 में पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। वो एक अनुभवी योद्धा थे। उनकी टुकड़ी में वो एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें सैन्य युद्ध का पूर्व और पर्याप्त अनुभव था।
1: जहां उनकी टुकड़ी में केवल 29 सैनिक ही थे, वहीं चीन की सेना में सैनिकों की संख्या तो बहुत थी ही। उनके पास अत्याधुनिक हथियार, बर्फीले क्षेत्र में युद्ध लड़ने का अनुभव, भारी मात्रा में रसद और ठंड से निपटने के लिए

0: सैनिक भाइयों, जैसा कि हम देख सकते हैं कि दुश्मन ने बंकर बनाने शुरू कर दिए हैं। वो हम पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, तो अब हमें भी फौरन खाइयां खोदना शुरू कर देना चाहिए। लग जाओ काम पे।
1: जी सुबेदार साहब।
0: हम 29 लोग हैं, तो कम से कम 4 खाइयां और 3 बंकरों की जरूरत पड़ेगी हमें। साथियों, बेशक दुश्मन के पास बेहतर हथियार हैं और वो तादाद में हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें याद रखना है कि आज भारत माता का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है, तो हर एक हिम्मत बढ़ा के रखेगा।
1: जी सुबेदार साहब।
0: बोले सोनिहा
2: सत श्री अकाल।
3: दिन था 20 अक्टूबर 1962, सुबह 5:30 बजे का समय। कड़ाके की ठंड थी।
4: तेजा सिंह, और चाट बना दे यार, सवेर होगी।
5: हैं भाई साहब,
0: ओए वो फायर आ रहा है, झुक जाओ, झुक जाओ, झुक जाओ।

0: भीषण संग्राम हो रहा था। एक ओर आधुनिक हथियारों से लैस भारी संख्या में चीनी सेना, तो दूसरी ओर सूबेदार जोगिंदर सिंह के नेतृत्व में सिख रेजिमेंट के मात्र 29 सैनिक। चीनी सेना के पास बल था तो भारतीय सेना के पास मनोबल।
1: इस बीच जोगिंदर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी लाइट मशीन गन से हमला जारी रखा और शत्रु पक्ष के बहुत से सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
0: और अब जो कुछ हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। भारतीय सैनिकों के पास गोलियां कम थी और वो बहुत देर तक गोला बारूद से चीनी सेना का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसलिए सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अब आमने सामने के युद्ध का रास्ता चुना।
1: सिख सैनिकों ने अपनी बंदूकों पर बायोनेट यानी संगीन लगाई और जो बोले सो निहाल के युद्ध घोष के साथ प्रचंड वेग से चीनी बंकरों पर टूट पड़े। संगीन के पहर ने शत्रु शिविरों में खलबली मचा दी।
0: तवांग दर्रे के इस युद्ध में जोगिंदर सिंह के परम मित्र सूबेदार काला सिंह भी शामिल थे और इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी भी। उन्होंने उस दिन के युद्ध की घटना को याद करते हुए बताया,
2: उस दिन हमारे सैनिकों के रौद्र रूप को देखकर चीनी सैनिक बुरी तरह से घबरा गए थे। उन्होंने सिख रेजिमेंट के जवानों को तूफान की तरह अपने कैंप की तरफ बढ़ते हुए देखा था। उनकी दाढ़ियां खुली हुई थी और हवा में लहरा रही थी। हालांकि वो तादाद में बहुत कम थे, पर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि चीनी कैंपों पर वो कह ठा देंगे।
0: इस आमने सामने के युद्ध में भी सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया। उनके रण कौशल से प्रतिपक्ष के बहुत से सैनिक खेत रहे। वो गंभीर रूप से घायल होने पर भी पूरी ऊर्जा के साथ लड़ते रहे और अंत में जमीन पर गिर गए।
1: इसके बाद भी उन्होंने धीरे धीरे रेंगना शुरू किया, लेकिन एक बर्फीली चट्टान से गिरकर खाई में बर्फ की परतों के नीचे दब गए।
0: इसके बाद उन्हें किसी ने

0: नहीं देखा और ना ये पता चला कि वो कहाँ हैं। सूबेदार जोगिंदर सिंह को उनकी कर्तव्य निष्ठा, सशक्त और प्रेरणादायक सैन्य नेतृत्व और असाधारण वीरता के लिए देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: बाद में पता चला कि वो चीन की सेना द्वारा युद्धबंदी बना लिए गए थे। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया है। ये जानकर चीन ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ 17 मई 1963 को सूबेदार जोगिंदर सिंह की अस्थियां उनकी बटालियन के सुपुर्द कर दी। जी हां, सूबेदार जोगिंदर सिंह की अदम्य वीरता को देखकर चीन की सेना भी सम्मान से भर गई और चीन ने ससम्मान उनकी अंतिम क्रिया भी की थी।
0: उनका अस्थि कलश मेरठ के सिख रेजिमेंट सेंटर में लाया गया और वहां उनके सम्मान में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया।
1: सूबेदार जोगिंदर सिंह, आपको हमारा शत शत नमन।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
3: अभी कुछ दिन पहले मेरे मिनी टेम्पो की हेडलाइट बंद हो गई। मैकेनिक बोला, भाई रात को मत चलाना। हमने सोचा यार, इतना तो चलता है, रोज का रास्ता है, मैं जानता हूँ।
4: आगे एग्जिट नहीं दिखा और बाइक वाले ने इंडिकेटर भी नहीं दिया।
3: चलता है बोलने से किसी की जिंदगी भी रुक सकती है।
5: चलाने से पहले हमेशा ये सुनिश्चित करें कि हेडलाइट ठीक से काम कर रही हो। सही रोशनी से रास्ता भी साफ दिखाई देता है और आसपास चल रहे वाहन भी दिखाई देते हैं।
2: श्रोताओं, इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
6: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना,
2: कुसुमलता,
6: वीरेंद्र
2: और हमारी आज की विशेषज्ञ
6: सहायक आचार्य दीपमाला जी के साथ कल तक के लिए विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ हम मार्केट मंत्रा कार्यक्रम लेकर फिर से हाजिर हैं। आज की खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं आर्थिक विश्लेषक उदयन रे। उदयन जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ में अर्जुन।
0: Benchmark domestic indices rebound. Sensex jumps over 1%. Nifty settles above 22,500 mark. Asian stock markets end mixed and global crude oil prices decline.
1: घरेलू शेयर बाजार में आज तेजी का रुख। सेंसेक्स में 1% से अधिक का उछाल और निफ्टी 22,500 अंक से ऊपर बंद हुआ। एशियाई शेयर बाजारों में मिला जुला रुख और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट।

0: बाजार में लगातार दो कारोबारी सत्रों से जारी गिरावट का सिलसिला थम गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 879 अंक यानी 1.23% की बढ़त के साथ 72,472 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 289 अंक यानी 1.3% चढ़कर 22,520 पर पहुंच गया। विस्तृत बाजार में भी आज तेजी का रुख देखने को मिला। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मिड कैप सूचकांक करीब 1.7% उछला, जबकि स्मॉल कैप में 0.5% से अधिक की बढ़त दर्ज हुई।
1: बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस रीबाउंडेड टुडे, स्नैपिंग अ टू डे लूजिंग स्ट्रीक। Sensex advanced 879 points, 1.23%, to close at 72,472. Nifty gained 289 points, 1.3%, to settle at 22,520. In the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index rose nearly 1.7% and the small-cap 100 index added over 0.5%.
0: सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से 29 के शेयरों में तेजी रही। बढ़त दर्ज करने वाली प्रमुख कंपनियों में आईटीसी के शेयर 4.8% चढ़े, टीसीएस में 4.2% से अधिक की तेजी आई, जबकि अडानी पोर्ट्स के शेयर 3.4% मजबूत हुए। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज एकमात्र ऐसी कंपनी रही जिसके शेयरों में 0.6% की गिरावट देखी गई।
1: All 28 sectoral indices on the Bombay Stock Exchange edged upward. Among the top gainers, focused IT climbed nearly 3%, IT jumped 2.9% and hospitals gained 2.5%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was positive as shares of 2,516 companies advanced, 1,867 companies declined and 227 companies remained unchanged.
0: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले आज 5 पैसे की मजबूती के साथ 96.74 रूपये पर बंद हुआ। उद्यन एक बार कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है।
2: धन्यवाद।
0: एक बड़ा सवाल यह है कि 8 सप्ताह में लगातार बाजार गिरावट के साथ बंद होता रहा, आज हमने देखा कि 8 सप्ताह के बाद बाजार तेजी के साथ बंद हुआ और ये भी हम देख रहे हैं कि बिकवाली अभी रुक नहीं रही।
2: हाँ, देखिए जैसे होता है कि बारिशों के मौसम में काफी दिन जब बारिश होती है और एक दिन धूप खिल निकल आती खिलती हुई तो वेलकम तो लगता है, वो उसका सभी स्वागत करेंगे। पर ये बताने लायक बात ये है कि ये जैसे कि पूरा जो मार्केट का मूड और मूवमेंट रहा है वो कच्चे तेल के दाम और खाड़ी में जो संघर्ष चल रहा है उसके साथ जुड़ा हुआ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब क्योंकि कल अमरीकी राष्ट्रपति ने कुछ ऐसे वक्तव्य दिए जिससे लगा कि अगले कुछ हफ्तों तक वहां पे जो चुनाव होने वाले हैं मिड टर्म्स, तो वहां तब तक शायद संघर्ष ना हो, कोई ताजा संघर्ष ना हो, तो उससे थोड़ा सा एक रिलीफ मिला है। और दूसरा, आईटी सेक्टर में एक प्रमुख कंपनी के नतीजों का जब आकलन किया गया है तो उसमें उम्मीद जगी है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वहां पर यह पाया गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से जुड़े हुए जो उनकी गतिविधियां हैं एक्टिविटीज हैं वहां पे एक बहुत हेल्दी डेवलपमेंट देखा गया, ग्रोथ देखा गया। तो एक कुछ बातें जो कई बार क्या होता है आपको एक प्लेजेंट सरप्राइज कहीं और से आ जाता है, तो बोथ रिजल्ट्स की जरिए से और दूसरा जो वैश्विक एक परिस्थिति है उन दोनों के चलते वो एक हेल्प हुआ। दूसरे जो मार्केट वॉचेस हैं वो आपको और भी पॉइंट्स बताएंगे, पर मेरे हिसाब से ये दो सबसे प्रमुख कारण है।
1: वी सॉ अग्रेसिव बाइंग बाय द डीआईआईज टू द ट्यून ऑफ 4,723 करोड़ रुपीस इन द मार्केट्स टुडे एज नेट बायर्स। आईटी एज यू मेंशनड अर्लियर has gone up by 3% in valuation today, backed by the second quarterly earnings report declared. There are also going to be other reported earnings next week coming up. Do you see IT once again go up in valuation despite the negative news in terms of US green cards filing restrictions on top IT companies in the US?
2: Yeah, Arjun, I would stick my neck out and say probably yes. You know, because on a day like this, when, as you mentioned, that negative headline came from, negative announcement came out from the US, which obviously affects Indian IT companies. There are probably about 8 or 9 of them. And also professionals. On a day like this, to not get impacted on the boards and the whole sector doing well.

0: It's showing that the market is discerning. They're seeing, they're not going right at the top headline, they're going inside the numbers. And these are, IT companies are very well tracked. So my sense is that, Arjun, probably that's what's going to happen. And maybe that's not going to stop, you know, even at the mid tier kind of companies, IT companies which are there, they're also doing very interesting, deft, making deft moves. So you might just see this continuing, this before this whole gloomy kind of commentary that was going around.
1: So fundamentals are being looked at. Artificial intelligence, 10% of the revenue earnings of this top IT company that declared its second quarterly earnings report today itself. So we expect the IT sector to go up. What about banking? Today, Nifty Bank also went up by 742 points. There was discussion in the previous programs about the monetary policy of the central bank raising the repo rate by 25 basis points, and that would also have a positive impact on the earnings of the banking sector in terms of their net interest income, their NPAs coming down. So it's not just the IT sector, but you expect, again, fundamentally, the earnings reports of banks also to come up and show good results.
0: I reckon that will happen. One very good thing or very interesting thing that has happened, Arjun, is their higher cost deposits. They've been able to rework that through their FCNR flows, you know, the NRI deposit that they've raised. So they have these very expensive, not very expensive, but they were more expensive deposits. So they have been able to turn it around. They've been able to move it around. So that cost has come down, and now they will be their flush. They're not under so much of pressure to raise deposits. So they're in a good place. What's going to happen is they would be able to reprice their loans, as in a floating rate loan, especially home loans. They should be able to. That happens quicker than, you know, managing deposit rates. Had this FCNR thing not happened, that NRI deposit, that huge amount that they have raised, then that might just have been a challenge. But it's in a good place. And I mean, good place as in it's not going to get affected negatively. Obviously, everybody is looking at the festive season, where they're hoping that the whole financial sector, NBFCs, banks and others, they will be able to facilitate the sales spike that typically
1: consumption
0: happens. Yes, absolutely.
2: Then, thoda sa agar स्मॉल कैप और मिड कैप की बात करें, मिलाजुला रुख हमने पूरे सप्ताह में देखा, तो इसे ये कह सकते हैं कि जो छोटे निवेशक हैं उनका भरोसा लार्ज कैप की बजाय स्मॉल कैप मिड कैप का ज्यादा हो रहा है, क्योंकि वहां बिकवाली ज्यादा हो रही है?
0: नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता. वो देखिए, स्मॉल कैप मिड कैप में ना एक बात है कि वहां पे एक लिक्विडिटी इश्यू रहता है. तो आप देखेंगे कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं, वो वहां पे मतलब बहुत बहुत सावधानी के साथ वहां पे ऑपरेट करते हैं. ये तो हमारे डीआईआईज हैं, हमारे स्वदेशी जो इंस्टीट्यूशन संस्थान है, वो वहां पे जाके वहां पे उनको अपॉर्चुनिटी दिख रही है. पर यह भी सच है कि वहां पे जो कल के सुपरस्टार्स हैं वो वहां पे हैं. तो हाँ, तो वो जो शुभन गिल आज से 5-6 साल पहले थे, वो उस टाइप के स्टॉक्स हैं वहां पे. तो वो भी अपॉर्चुनिटी है वहां पे. वो होता है, जोखिम भी ज्यादा होता है. पर मुझे ऐसा नहीं लगता. मुझे लगता है कि ये एक इतने दिन तक ऐसा एक माहौल बना रहा, तो आज जब हाई टाइड आया तो सब सारे बोट्स उठ गए. तो पर वहां पे काफी इंटरेस्टिंग स्टोरीज आ रही हैं, इन्वेस्टिंग स्टोरीज आ रही हैं, जिसकी वजह से भी इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट आ रहा है. ऐसा नहीं है कि मतलब भेड़ चाल में सब कुछ चल रहा है. वहां पे काम अच्छा हो रहा है. पर स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स में अगर कुछ सुपरस्टार बन जाते हैं, तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो साइड में रह जाते हैं. तो वो दोनों टाइप के रिस्क होते हैं. तो वो आप अगर किसी के थ्रू जा रहे हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स या एनपीएस या किसी और के थ्रू से आपका निवेश हो रहा है, स्लाइटली बेटर होता है, क्योंकि वहां पर आपको एक्सपर्टीज का फायदा मिलता है.
2: तो क्या ये समय है लार्ज कैप में इन्वेस्ट करने में, क्योंकि जिस तरह के मार्केट के हालात हम देख रहे हैं, चारों तरफ जैसी स्थितियां बनी हुई हैं?
0: देखिए, अगर लंबी अवधि के लिए आप निवेश कर रहे हैं, तो एक तो ये है कि आप लार्ज कैप देखें, मिड कैप देखें, फिर मल्टी कैप, उस टाइप की बातें करें, मतलब या तो सीधे स्टॉक या फंड्स हैं. दूसरा है कि बिल्कुल आप

0: चिंता जताई गई
1: जी
0: है।
1: बिल्कुल है। और अगर आपने कमेंट्री देखी होगी इंटरेस्ट रेट से जुड़ी हुई, इसीलिए लोगों का मानना है कि एक और इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी, एक और राउंड शायद साल के अंत में या अगले साल के बिल्कुल शुरुआत में एक और होगा। उसके बाद अगर जो खाड़ी क्षेत्र में जो संघर्ष है वो अगर बढ़ना जाए तो फिर उसके बाद एक ईजिंग होगी, नहीं तो अभी लोगों का मानना है क्योंकि ये इस टाइप की चीजें हो रही हैं, कुछ और भी घटनाक्रम में उम्मीद की जा रही है, तो उनको मानना है कि जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स है, मुद्रास्फीति की जो दबाव है वो बरकरार रहेगी, और उसको काउंटर करने के लिए आरबीआई को शायद एक और रेट हाइक, रेट इन ब्याज दरों में बढ़ोतरी की एक और राउंड की जरूरत पड़ेगी।
0: आईएमडी ने भी आंकड़े जारी किए हैं, उनके अनुसार ये कहा गया कि जुलाई से सितंबर के बीच में हमारा जो रेनफॉल है वो वर्ष 2001 के बाद से अपने मतलब सबसे न्यूनतम स्तर पर आ गया, इसका भी काफी असर पड़ रहा है।
1: बिल्कुल, ये और ये सबसे पहले जब भी वेदर सिस्टम में प्रॉब्लम होती है, इस टाइप के सिचुएशन आती हैं, परिस्थितियां होती हैं, तो सबसे बड़ी चिंता होती है कि हमारे कृषि के ऊपर क्या असर पड़ेगा, खाद्य पदार्थ और खाद्य पदार्थ से जुड़े हुए जो दाम हैं उनके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, और उस हिसाब से सरकार को अपनी जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्शंस हैं वो प्लान करने पड़ते हैं।
2: जी। In more news, GST Council yesterday announced a host of reforms aimed at improving compliance in the GST regime. Talking to Akashvani, Jyoti Vij, Director General of Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, said GST Council's reforms announcement will facilitate the ease of doing business.
3: ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और डीक्रिमिनलाइजेशन की तरफ काफी इसमें पॉजिटिव मेजर्स लिए गए हैं। रजिस्ट्रेशन में हमारे इंडस्ट्री की एक मांग थी कि ई कॉमर्स कंपनीज की जब स्टेट लेवल पे रजिस्ट्रेशन होती है तो वो स्टेट लेवल के एड्रेसेस मांगते हैं, ई कॉमर्स के हर जगह में अपने ऑफिसेज नहीं होते, तो हमारा रिकमेंडेशन था कि वेयर हाउसेज को लिया जाए, वो रिकमेंडेशन जो है वो मान लिया गया है। नोटिसेस जो जाएंगे वो एक थ्रेश होल्ड कर दी गई है 10,000 की, तो वो 90% उसी में कैप्चर हो जाते हैं, इसमें काफी नोटिसेस कम हो जाएंगे, ये काफी परेशानी थी इंडस्ट्री की। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इजी कंप्लायंसेस, डीक्रिमिनलाइजेशन, इन सब से इंडस्ट्री का फायदा होगा।
2: स्पीकिंग टू आकाशवाणी, डॉक्टर रंजीत मेहता, सीईओ एंड सेक्रेटरी जनरल ऑफ द पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वेलकम द जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशंस।
4: The recommendation of the 57th GST Council meeting represent a significant step towards making India taxation system simpler, more transparent and business friendly. The recommendation to remove arrest provision under GST, increase the prosecution threshold from 1 crore to 5 crore, sends a strong message that genuine business should be encouraged, not burdened by excessive procedural complexities.
2: Will you brief comments on this because GST collection for the month of September was 2.04 lakh crore rupees. But again, those who are collecting don't want to be on the wrong side of the law. It's been decriminalized. The ease of doing business has gone up. How do you see the new reforms?
1: I think it can be quickly split into a couple of parts. One is the, Arjun, when you get into GST payments, your money gets stuck. So a lot of these provisions that they're talking about, it frees up the money. You can claim credit or money that's getting stuck, that's getting opened up. So for small business, that's a big deal. Second is compliance. Compliance is a big deal. You know, it takes up a lot of time. Are you going to do business or are you going to comply with GST? So you're making it easier. All these multiple registrations, things related to exports, e-commerce, as your soundbite mentioned, these are administrative things which were kind of anachronistic and troublesome. Adhering to them was a challenge. So that has been taken care of. So I would say these two, in terms of compliance, in terms of cumbersomeness, they have been fixed.
2: In more news, India Today stressed that the steps announced by the US regarding Permanent Labor Certification Program, PERM, do not advance the shared ambitions of both countries. Addressing the media in New Delhi this afternoon, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal emphasized that talent mobility adds value to both economies of India and the US. He also highlighted that while it creates opportunities for Indians, it equally benefits US companies by providing access to cutting-edge talent, innovation research, productivity, competitiveness and job creation. The spokesperson further stated that besides creating shareholder wealth

0: சில நொடிகளில் ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள் டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल की है। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कजगम यानी TVK ने भी दारापुर और मधुरांतकम सीट जीत ली है। पुदुचेरी की तट्टा नचावड़ी सीट पर हुए उपचुनाव में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस विजयी रही। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भाजपा के देवाशीष शर्मा ने जीत हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि असम की नौगांव और पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम तथा रेजीनगर के चुनाव नतीजे दिखाते हैं कि लोगों का भाजपा एनडीए के सुशासन पर भरोसा है। उन्होंने भाजपा उम्मीदवारों और पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। श्री मोदी ने पुदुचेरी के तट्टान चावड़ी में जीत के लिए एनडीए की सहयोगी पार्टी AINRC को भी बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह जीत लोगों की भलाई और उनके बेहतर भविष्य के लिए काम करने में पार्टी को और मजबूती देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों की सेहत, पोषण और सर्वांगीण विकास पर ज्यादा ध्यान देने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में महिला एवं बाल विकास पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने जन भागीदारी पर जोर दिया और आंगनवाड़ियों को सामुदायिक भागीदारी का केंद्र बनाने का आह्वान किया। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर आज प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी CJP के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।
2: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ CEC के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
1: सुश्री प्रसाद ने कहा है कि CJP ने पहले भी पुलिस के दिशा निर्देशों और खुद के आश्वासनों का पालन नहीं किया था। पुलिस ने कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए अनुमति नहीं दी है। सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से रात 9 बजे से आज 57 मेट्रो स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को छोड़कर बाकी सभी संबंधित स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इधर रेल मंत्रालय ने आज सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर

0: இரவின் மடியில் நிகழ்ச்சிகள் இதுவரை காக்கி சட்டை, நானே ராஜா நானே மந்திரி, படிக்காதவன் ஆகிய படங்களிலிருந்து பாடல்கள் கேட்டீர்கள். சில நொடிகளில் ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள் டெல்லியிலிருந்து அஞ்சலாகும்.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर आज प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया। संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।
2: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ सीईसी के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
1: सुश्री प्रसाद ने कहा कि सीजेपी ने पहले भी पुलिस के दिशा निर्देशों और खुद के आश्वासनों का पालन नहीं किया था। पुलिस ने कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अनुमति नहीं दी है। सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से रात 9 बजे से आज 57 मेट्रो स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया है। इधर रेल मंत्रालय ने आज सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने राजधानी के कई इलाकों में यातायात के मार्ग में परिवर्तन के लिए परामर्श जारी किया है। पुलिस ने कहा कि हालात के हिसाब से आज सुबह 6 बजे से मार्ग परिवर्तन लागू हो जाएंगे। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना बनाने से पहले से बना लें और गैर जरूरी यात्रा से बचें। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को आज कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली मेट्रो और रेल सेवाओं को पूरी तरह बंद नहीं करने का निर्देश दिया है। न्यायालय की पीठ ने कहा कि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाएं नियंत्रित तरीके से चलनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि सुरक्षा के लिए सेवाओं को नियंत्रित करना और उन्हें पूरी तरह बंद करना अलग अलग बातें हैं। चुनाव आयोग ने व्यक्तिगत मतदाताओं द्वारा भरे जाने वाले फॉर्म 7 आवेदनों की संख्या तय कर दी है। इसके तहत दावे और आपत्तियों की अवधि के दौरान ज्यादा से ज्यादा 10 आवेदन और मतदाता सूची को लगातार अद्यतन करने की प्रक्रिया के दौरान हर महीने 5 आवेदन ही भरे जा सकते हैं। ओडिशा में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2024 का प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 10 स्थानों पर छापेमारी की है। ईडी अधिकारियों ने बताया कि ये मामला पिछले साल अक्टूबर में ओडिशा पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से जुड़ा है और बाद में इसे केंद्रीय जाँच ब्यूरो सीबीआई को सौंप दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के रेजीनगर और नंदीग्राम सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल की है। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ तमिल का वेत्री कजगम टीवीके ने भी दारापुर और मदुरांतकम सीटें जीत ली हैं। पुद्दुचेरी की तट्टानचावड़ी सीट पर हुए उपचुनाव में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस विजयी रही। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भाजपा के देवाशीष शर्मा ने जीत हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि असम की नौगांव और पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम तथा रेजीनगर के चुनाव नतीजे दिखाते हैं कि लोगों का भाजपा

भाजपा एनडीए के सुशासन पर भरोसा है। उन्होंने भाजपा उम्मीदवारों और पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। श्री मोदी ने पुद्दुचेरी के तट्टा नचावड़ी में जीत के लिए एनडीए की सहयोगी पार्टी AINRC को भी बधाई दी। क्रिकेट में रांची में खेले गए दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली है। जीत के लिए 250 रन का पीछा करते हुए इंग्लैंड वेस्टइंडीज ने 6 विकेट और 9 गेंद बाकी रहते हुए लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने तय 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर 249 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर आज प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।
1: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ सीईसी के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
0: सुश्री प्रसाद ने कहा कि सीजेपी ने पहले भी पुलिस के दिशा निर्देशों और खुद के आश्वासनों का पालन नहीं किया था। पुलिस ने कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अनुमति नहीं दी है। सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से रात 9 बजे से आज 45 मेट्रो स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को छोड़कर बाकी सभी संबंधित स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इधर रेल मंत्रालय ने आज सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने राजधानी के कई इलाकों में यातायात के मार्ग में परिवर्तन के लिए परामर्श जारी किया है। पुलिस ने कहा है कि हालात के हिसाब से आज सुबह 6 बजे से मार्ग परिवर्तन लागू हो जाएंगे। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और गैर जरूरी यात्रा से बचें। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को आज कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली मेट्रो और रेल सेवाओं को पूरी तरह बंद नहीं करने का निर्देश दिया है। न्यायालय की पीठ ने कहा कि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाएं नियंत्रित तरीके से चलनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि सुरक्षा के लिए सेवाओं को नियंत्रित करना और उन्हें पूरी तरह बंद करना अलग अलग बातें हैं। कल शाम विपक्ष के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के कामकाज पर लगे आरोपों के सिलसिले में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति को विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों के बारे में जानकारी दी। चुनाव आयोग ने व्यक्तिगत मतदाताओं द्वारा भरे जाने वाले फॉर्म 7 आवेदनों की संख्या तय कर दी है। इसके तहत दावे और आपत्तियों की अवधि के दौरान ज्यादा से ज्यादा 10 आवेदन और मतदाता सूची को लगातार अपडेट करने की प्रक्रिया के दौरान हर महीने 5 आवेदन ही भरे जा सकते हैं। आयोग ने यह निर्णय इसलिए लिया ताकि कोई एक मतदाता बड़ी संख्या में आपत्तियां न दर्ज करा सके। ये सीमा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से फॉर्म भरने पर लागू होगी। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल की है। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कजगम TVK ने भी दारापुरम और मदुरांतकम सीटें जीत ली हैं। पुद्दुचेरी की तट्टान चावड़ी सीट पर हुए उपचुनाव में ऑल इंडिया NR कांग्रेस विजयी रही। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भाजपा के देवाशीष शर्मा ने जीत हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि असम की नौगांव और पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम तथा रेजीनगर के चुनाव नतीजे दिखाते हैं कि लोगों का भाजपा NDA के सुशासन पर भरोसा है। उन्होंने भाजपा उम्मीदवारों और पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। श्री मोदी ने पुद्दुचेरी के तट्टान चावड़ी में जीत के लिए NDA की सहयोगी पार्टी AINRC को भी बधाई दी। हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन आज से झांसी में किया जाएगा। ये प्रतियोगिता 21 अक्टूबर तक खेली जाएगी। प्रतियोगिता की 3

0: ने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ सीईसी के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
1: सुश्री प्रसाद ने कहा है कि सीजेपी ने पहले भी पुलिस के दिशा निर्देशों और खुद के आश्वासनों का पालन नहीं किया था। पुलिस ने कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अनुमति नहीं दी है। सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से रात 9 बजे से आज 45 मेट्रो स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को छोड़कर बाकी सभी संबंधित स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इधर रेल मंत्रालय ने आज सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने राजधानी के कई इलाकों में ट्रैफिक डायवर्जन के लिए एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने कहा है कि हालात के हिसाब से सुबह 6 बजे से डायवर्जन लागू हो जाएंगे। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और गैर जरूरी यात्रा से बचें। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को आज कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली मेट्रो और रेल सेवाओं को पूरी तरह बंद नहीं करने का निर्देश दिया है। न्यायालय की पीठ ने कहा कि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाएं नियंत्रित तरीके से चलनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि सुरक्षा के लिए सेवाओं को नियंत्रित करना और उन्हें पूरी तरह बंद करना अलग अलग बातें हैं। कल शाम विपक्ष के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के कामकाज पर लगे आरोपों के सिलसिले में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति को विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों के बारे में जानकारी दी। चुनाव आयोग ने व्यक्तिगत मतदाताओं द्वारा भरे जाने वाले फॉर्म 7 आवेदनों की संख्या तय कर दी है। इसके तहत दावे और आपत्तियों की अवधि के दौरान ज्यादा से ज्यादा 10 आवेदन और मतदाता सूची को लगातार अपडेट करने की प्रक्रिया के दौरान हर महीने 5 आवेदन ही भरे जा सकते हैं। आयोग ने ये फैसला इसलिए लिया ताकि कोई एक मतदाता बड़ी संख्या में आपत्तियां न दर्ज करा सके। ये सीमा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से फॉर्म भरने पर लागू होगी। सर्वोच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति और यूनिसेफ के सहयोग से आज नई दिल्ली में किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के 10 साल पूरे होने पर राष्ट्रीय वार्षिक हितधारक परामर्श कार्यक्रम आयोजित करेगी। 2 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में कानून लागू करने में आ रही चुनौतियों की पहचान और अगले 10 वर्षों में किशोर न्याय तथा बाल संरक्षण व्यवस्था को मजबूत करने की प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज झारखंड के देवघर का दौरा करेंगे। इस दौरान वे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स देवघर के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति देवघर के BBMT अस्पताल में आयोजित सैन्य संपर्क मेले का भी दौरा करेंगे। मौसम विभाग ने केरलम, माही, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में आज तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस बीच कोंकण और गोवा में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी गुप्ता। BJP has registered massive victories in both assembly constituencies of West Bengal Nandigram in East Midnapore district and Rajinagar in Murshidabad district, where by-elections were held. With victories in both these constituencies, the BJP's tally in the West Bengal assembly has risen to 209 seats. BJP also won the Nagaon Lok Sabha by-election in Assam.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर।
1: कार्यक्रम महिषासुर मर्दिनी, मूल आलेख बानी कुमार, हिंदी रूपांतरण दीप नारायण मिठोलिया, श्लोक पठन बीरेंद्र कृष्ण भद्र, वाचन और संगीत संयोजन पंकज कुमार मल्लिक।

भगवती महामाया है त्रिगुणात्मिका रजोगुण के अनुसार ब्रह्मा की गृहिणी वाग देवी सत्वगुण के अनुसार विष्णु की पत्नी लक्ष्मी और तमोगुण के अनुसार शिव की अर्धा

अवसान पर नाभि कमल से जाग उठे वावी कल्प के सृष्टि विधाता ब्रह्मा परंतु विष्णु के कर्णमल से उत्पन्न मधुकैटव असुर ब्रह्मा के कर्म और अस्तित्व के नाश के लिए उद्दत हो उठा तब पद्म योनि ब्रह्मा ने योग निद्रा मग्न सर्वशक्तिमान विश्व पिता विष्णु को जागृत करने हेतु जगत की स्थिति संहार कारिणी विश्वेश्वरी जगत जननी हरिनेत्र निवासिनी निरुपमा

तामसी देवी सबन से प्रबुद्ध हो विष्णु के अंग प्रत्यंग से बाहर प्रकट हो आई भंग हुई भगवान विष्णु की योग निद्रा तत्काल उन्होंने सुदर्शन चक्र उठाया और छिन्न कर डाला मधु कैटव का मस्तक ब्रह्मा पुनः ध्यान मग्न हो बैठे इधर दुर्धर्ष दैत्यराज महिषासुर के पराक्रम से परास्त हो देवतागण स्वर्गाधिकार से वंचित हुए

उपस्थित हुए। कारण ब्रह्मा के वरदान से ही था महिषासुर अपराजेय। उनके द्वारा दैत्यराज का क्षय असंभव जान उनके निर्देशानुसार देवताओं ने कमल योनि ब्रह्मा जी को अपना प्रतिनिधि बना वैकुंठ में जा देखा। भगवान विष्णु और देवाधिदेव भगवान शिव परस्पर आलाप मग्न है। ब्रह्मा जी ने अपने मुख से कह सुनाई महिषासुर के दुर्विषह अत्याचार की करुण कहानी। स्वर्ग भ्रष्ट देवताओं का विषाद सुनते ही परम शांति योगी वर महादेव का सुगौर मुखमंडल क्रोध से रक्त कमल के समान लाल हो उठा। शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण की तन गई भ्रुकुटियां।

महाशक्ति के आह्वान से आकाश में निनादित हो उठे महाशंख, विश्व योनि विष्णु और महारुद्र के शरीर से प्रस्फुटित हो निकली तेज की परम ज्योति, ब्रह्मा और देवगण के मुखमंडलों से निकल चला तेज, पर्वत प्रमाण ज्योति पुंज ने प्रज्वलित उताशन के तुल्य देवीप्यमान किरणों से दिग्मंडल को पूर्ण कर दिया, तेज रश्मियां एकत्रित हो परमा सुंदरी रूपवती दिव्य देवी मूर्ति में परिणत हुई, जगन्माता

नीरज तेज पुंज से प्रकाशित उनका अभिनव आविर्भाव हुआ महिषमर्दिनी रूप में। देवी सज्जिता हुई विचित्र रूपा रणचंडी रूप में। हिमाचल ने सिंह वाहन दिया विष्णु ने चक्र बिना पाणी शंकर ने शूल यम ने दंड काल देव ने सुतीक्ष्ण खंग चंद्र ने अष्टचंद्र शोभा से युक्त चर्म सूर्य ने धनुर्बाण विश्वकर्मा ने अभेद वर्म ब्रह्मा ने अक्षमाला और कमंडल कुबेर ने रत्न हार दे डाला सभी देवताओं ने। महादेवी को नाना अलंकारों से अलंकृत एवं विविध प्रहरणों से सुसज्जित कर उनसे असुर विजय यात्रा के निमित्त प्रार्थना की। रणदुंद विध्वनि से विश्व चराचर निनादित हो उठे यात्रा के पूर्व दुर्नर

इन्हीं मूर्ति का परिग्रह धारण कर फूका अपना शंख देवी के रणाहवान का अनुसरण कर ससैन्य दौड़ परा महाबलशाली महिषासुर असुर राज देख स्तंभित हुआ तेजस्विनी महालक्ष्मी की तेज प्रभा से त्रिलोक ज्योतिर्मय हो उठे उनका मुकुट आकाश का चुंबन करने लगा पदभार से सारी पृथ्वी नत हो गई और धनुष्टंकार से प्रकंपित हो उठा संपूर्ण रसातल देव सेनापति ने महाशक्ति के जय मंत्र के गुण से

देवी के साथ महिषासुर का भीषण संग्राम छिड़ा, देवी के अस्त्र प्रहार से दैत्य सेना छिन्न भिन्न हुई। महिषासुर क्षण क्षण पर रूप परिवर्तन कर अनेक प्रकार के कौशल का करने लगा विस्तार। महिष से हस्ती बना सिंह रूपी दैत्य की रण रमत्वता को देवी ने क्षण में प्रशमित किया। तत्काल वे इंद्रजालिक नयन विमोहन पुरुष वेश में प्रकट हुआ। देवी के हाथों प्रत्याख्यान हो वे पुनः महिष मूर्ति धारण कर बैठा। रणवाद दिग्दिगंत में

0: समान सारे रण क्षेत्र में विध्वंस करने लगा शत्रुओं को। नाना प्रहरण धारिणी देवी दुर्गा ने मधुपान करते हुए महिषासुर को ललकारा।
1: गर्ज गर्ज स्खलन मुहो मधु यावत पिबामि हम मया तैः हतेत्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवता।

तस्त्वमेका मही स्वरूपेण यतः स्थितासि अपां स्वरूपस्थितया तवैतदप्यायते कृष्णम् अलङ्घ्य वीर्ये वैष्णवी शक्तिर् अनंत वीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु विद्या समस्ता तव देवी भेदा श्रीयः समस्ता सकला जगत्सु तवैकया पूरितमम्ब यैतत् कापि स्तुतिः सद्य परा परोक्तिः स्वर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्ति प्रदायिनी त्वं सूता सुतये का वा भवन्तु परमोक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य निधि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमस्तुते कलाकष्ठादिरूपेण परिणाम प्रदायिनी विश्वस्योपरतौ शक्ते नारायणी नमस्तुते सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमस्तुते शरणागत दीनार्त परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणी नमस्तुते अंशयुक्त विमानस्थे ब्रह्माणी रूपधारिणी कौशाम्भशरिके देवी नारायणी नमस्तुते त्रिशूलचन्द्राही धरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमस्तुते मयूरकुक्कुटभृते महाशक्तिधरे नघे कौमारी रूपशमस्थाने नारायणी नमस्तुते शङ्खच

आपे भियो अने सुता निव असुरासरिक बसापंक जच्चितस्ते करज्वला शूहाय खड़गो भवतू चर्णिके वांगनतावयं भोगान शेशान अपहंसि तुष्टा रुष्टातु कामान सकलान अभिष्टा त्वामश्रितानां नवीपन्नराणां त्वामश्रिता झाश्रयथां प्रयान्ति एतत्कृतं यत् कदलं तयाद्य धर्मदिशा देवि महासुराणां रूपैर् अनेकैर् बहुधात्ममूर्ति कृताम्बिके तत्प्रकरति कान्या विद्या।

तेषु वाक्येषु च का त्वदन्या मम प्रगत्ते अतीवान्धकारे बिभ्रामयत्येतदतीव विश्वम् रक्ष्यांषि यत्र ग्रवीशाश्च नागा यत्रारयो दस्युवलादि यत्र धावानलो यत्र तदाब्धिबन्धे तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वं विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धारसि।

चंडिका से सगुण महालक्ष्मी का प्रथम प्रकाश सप्त कांचन वर्णाभा दश प्रहरण धारिणी महिषासुर मर्दिनी महालक्ष्मी दुर्गा का पूजन वैभव

महिषासुर मर्दिनी। महालय के पावन अवसर पर आप सुन रहे थे देवी आराधन का ये विशेष कार्यक्रम। मूल आलेख बानी कुमार, हिंदी रूपांतरण दीप नारायण मिठोलिया, श्लोक पठन बीरेंद्र कृष्ण भद्र, वाचन और संगीत संयोजन पंकज कुमार मल्लिक।